शांतिः शांतिः शांतिः। वंदे दक्षिण कैलास वंदे हेमाग्निमपि वंदे वेणुभुवनेश्वरं वंदे श्रीमत्कान्तिमहेश्वरी वंदे श्रीमूललिङ्गञ्च श्रीमत्ताम्रसभापतिं शिवगामि समो वेदं सुन्दर।